0: आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं आगे शेर पढ़ूंगा।
1: बिल्कुल नया कलाम आज ही मैंने लिखा और फर्स्ट टाइम यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आज यहाँ से आगाज है। जरा दोनों हाथ उठा के कहेंगे सुभान अल्लाह तो बात बने।

0: पिंडाल में गोज हो जाए। यकीन जानिए ये लाइन बतौर कोरस मिलके मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे।
1: मेरे खुदा मेरी आंखों की जिंदगी के लिए मुझे दिखा दे बस एक बार मदीना, मुझे दिखा दे मदीना बस एक घड़ी के लिए। जिसको मदीना देखने की धुन है तड़प है, चाहे कोई खड़ा है बैठा है चाहे कोई स्टेज में है, ये लाइन मेरे साथ मिलके पढ़ ले। मैं धीमे आवाज में पढ़ूंगा, अब आपके साथ मुकाबला सख्त है, जरा झूम के पढ़े।